0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जाने में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी

0: से वंचित है कि वो डार्क है
1: जी।
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओ, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं, वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी।
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी।
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या?

0: यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
1: वाह, क्या बात है
3: मैम।
1: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सो हम अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं

0: उनके नाम इस प्रकार हैं, बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
5: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा,

यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 12 గంటలు కావస్తోంది. ఇప్పుడు వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे. राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा. ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा. इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है. ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है. गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है. नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है. एक रिपोर्ट.
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी. उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है. गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है. अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा.
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है. साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व

पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षो में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरल में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी, कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
2: है। हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
1: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
2: पुरुष जवाब दे।
1: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
2: पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के

0: हमारे जवाब भी नहीं देंगे
1: खामोश बैठ जाएंगे तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
0: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाएं, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
1: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
0: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: और शब्द हमारा विचार आप सभी के मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है, लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है, लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
0: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल जाती है कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन
1: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है, लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले
0: कि विकराल रूप ले
1: विकराल
0: ले।
1: रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो ईर्ष्या, तो बताएं।
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
1: दूसरों के बारे में
0: उनके क्या विचार है या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जिसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी मिठाई
1: हो सकता है। इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद मिलाद, तो ईद मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है। और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्योहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है ओणम। फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है ओणम।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है।
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये
0: कि
1: कहूं या वो कहूं, इसकी ये खासियत है तो उसकी वो
0: वो
1: खासियत
0: खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है।
1: और भरना भी नहीं चाहिए
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है, और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं
1: हाँ
0: कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे
1: यानी
0: जो

0: ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल की
1: केरल की बात करें। तो बताइए क्या खासियत है।
0: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
1: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
0: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है। और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
1: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
0: जीआई टेक के रूप में।
1: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है।
0: यानी उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
1: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है। और राज परिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था। और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
0: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
1: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है। तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
0: और है ना
1: हैं।
0: वो ऑफ वाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के जो जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और इसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
1: क्या बात है, वो
0: माहौल।
1: आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्त तो लगता है देखकर।
0: जी
1: अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें।
0: ये
1: इसके
0: सही
1: अलावा
0: बात
1: और
0: है।
1: कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में पड़
0: हमारे हाथ
1: जाएंगे।
0: जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नितुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
0: जी
1: टिप्पणी,
0: जी जी
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो
0: कितनी अच्छी
1: कितनी
0: दोस्ती।
1: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है ये। किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
0: उसकी कोई
1: लोग
0: परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं, ममता जी, कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है,
0: और
1: कोई अच्छा
0: अपना
1: रहता
0: कोई
1: है।
0: खास तौर से
1: हाँ
0: अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है।
1: हाँ
0: लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी,
1: जी,
0: पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो
1: या
0: अच्छा।
1: फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती
0: हाँ,
1: थी, तब लगता था अरे ये हमारे टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और
1: और
0: हमारा
1: हमारा
0: नहीं
1: नाम
0: लेती
1: नहीं।
0: ये एक सहज ईर्ष्या होती है।
1: हाँ
0: बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या
1: जी,
0: लिखा है।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: वही तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, ये हमारी सखी है, कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है। जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ो अगर उसे आंगन में, क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा, ऐसी बहाने साफ सफाई हो
1: साफ सफाई
0: जाती
1: हो
0: है। एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर हम मेहनत करने लग गए,
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गई।
1: हाँ,
0: और अगर हम सिर्फ जलते कूदते रहे तो वो नकारात्मक
1: बस
0: ही हो
1: घर
0: गई
1: में
0: ना।
1: बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल।
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और
1: और
0: कई
1: व्यंजन
0: बार
1: भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
1: हाँ, कि आपके घर
0: और
1: में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और
1: हाँ,
0: बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी
1: इस
0: है
1: विषय पर बनी है।
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक।
1: छोटे

0: कहाँ खो गई से? सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है, और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है, ममता जी, कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन

0: बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद
1: उनके नाम से पहचाना
0: जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है न कि नाम, जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने की प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी,
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम अपने पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
1: जो चल रहा है वो अच्छा है
0: जी।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जान

0: लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल। वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार न चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार कर एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाएं, गैस की आंच धीमी करें, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाएं। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा

0: और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखे और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे। उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
1: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे, और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए?
0: गाना
1: आप
0: सुनवा दे।
1: सुनवाते हैं
2: नहीं
1: ये
2: नहीं
1: गाना।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है। मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं, मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे।
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे। मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरह स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था, उन दिनों बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया। और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
2: छुटपन पे मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था
1: बिल्कुल।
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहां पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था
1: जी।
2: ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको

0: बहुत बढ़िया, आपको संयम भी दिखता था वहां पे, पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं,
1: जी
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ
0: फिर
1: वक्त रहे
0: नेपाल, फिर
1: जी।
0: मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था,
1: जी
0: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो
1: जी
0: नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहाँ तबादला हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ
1: जी
0: बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ। क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया,
1: जी
0: मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मीला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक
0: कुछ
1: ये
0: समझ आया।
1: स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने,
0: जी
1: उस
0: जी
1: बारे
0: जी
1: भी कुछ
0: जी
1: बताएं,
0: तो उस
1: दिलचस्प की
0: समय
1: बात है
0: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, कलकत्ते में, दमदम में,
1: जी।
0: मैं हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाकया, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मीला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मीला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो
1: बिल्कुल
0: नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के, खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे, और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छोटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो, या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं, रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था
1: जी
0: बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई, मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल
0: तो किताबें दोस्त बन गई, और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कह सकते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया।
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना
0: हाँ,
1: है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया, मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया, हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ, इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, वो रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी, कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड
1: असेंबली
0: में सब
1: में
0: स्टूडेंट

0: सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे,
1: हाँ बिल्कुल
0: तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा नहीं, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे, बॉम्बे उसे बॉम्बे कहते चले
1: जी
0: जाना।
1: जी
0: मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ, तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया।
1: बो दिया गया
0: और
1: था
0: तब मैं
1: बिल्कुल
0: क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं कलकत्ता नहीं मेरे बॉम्बे
1: बॉम्बे
0: ले
1: भेजना
0: जाएगी,
1: चाहता
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया, दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना
1: तो ये
0: करना।
1: नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है
0: मेरा
1: कि
0: हाँ
1: टेलीविजन फिल्म्स उसके
0: जी
1: आगे
0: जी
1: प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है एक
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो
1: जी
0: वो नाटक है, बाकी सब प्रेम प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहां पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो
1: बिल्कुल
0: मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना है, मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें, वो मेरा एक
1: सुनवाते हैं
0: पसंदीदा
1: गाना
0: गाना है।
1: हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से अब जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सबके?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, तमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
2: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
2: हाँ, मेरा शहर
1: जी,
2: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
2: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है, हमको इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
2: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
2: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभलें,
2: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना
1: जी,
2: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल,
2: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा।

0: आ जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे। तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में, लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है। तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है,
1: बिल्कुल,
0: अकेले खड़ा होना चाहता है।
1: मैं
0: तो
1: सबसे अलग।
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो। तो
1: बिल्कुल।
0: यहां जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहां पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूं।
1: जी
0: आज का जो दौर चल रहा है,
1: हाँ।
0: युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एसडी बर्मन ने कमाल का जो है से सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, इसमें
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की,
1: जी
0: 80s 90s से आप जुड़े हैं,
1: हाँ
0: नुक्कड़ नाटक भी किए हैं,
1: जी
0: थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी जी
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में? या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर
0: सब
1: किसी का
0: पैरेलल
1: स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं,
0: जी
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं।
0: जी
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उस

0: से हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों

0: म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है।
1: जी
0: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है, तो बात करने का जरिया होता है। जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं।
1: जी
0: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है, तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएसीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं,
1: बिल्कुल
0: उनको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए,
1: हाँ
0: वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट, तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह पर।
0: अपनी अपनी जगह है, आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो
1: जी
0: वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना, तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो
0: जी
1: उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके, वो भी म्यूजिकल ही है। हाँ, वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें,
1: जी
0: बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि
1: जी
0: एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड
1: बिल्कुल
0: में का जो स्ट्रक्चर है उस
1: जी,
0: स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े हैं। बीबीसी
0: जी
1: के लिए आपने रेडियो
0: जी
1: ड्रामा
0: जी
1: किया,
0: जी जी
1: कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है,
1: जी
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है, तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: जी
0: तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो
1: बिल्कुल
0: उनकी आंखें बोलती थी।

0: अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: हाँ
0: तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में एक किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। अब तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि यह आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब
1: बिल्कुल
0: टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल
0: यह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत
1: बिल्कुल यहाँ पर आपकी पसंद का गीत
0: है
1: जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी। एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है
1: बिल्कुल और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
0: जी
1: वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की। तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन फुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं।

वास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था हल्का हिसाब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं।

0: सिनेमा से आए थे,
1: जी
0: जया जी जिनकी शुरुआत सतीश ढेरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है होश है, वो सुना दीजिए इसमें
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है
1: जी
0: आपका।
1: जी जी
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके
1: जी
0: बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे,
1: जी
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा
1: मैं थिएटर से टीवी में, मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्ट भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना। तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, ओहदा भी होगा
0: बिल्कुल
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा, उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही रहूंगा
0: अच्छा
1: और एक्टर नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था, कि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी
1: तो मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो।
0: बस एक
1: मैं
0: कलाकार, एक
1: बस
0: आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था। आप
0: अच्छा
1: सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है। उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का,
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे।
0: बिल्कुल
1: तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था, महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना। तो
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया, वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था। क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के
0: एक्शन
1: मास्टर्स
0: मूवीज
1: थे।
0: आ रही थी। हाँ बिल्कुल
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे।
0: बिल्कुल
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर
0: ना के
1: था।
0: बराबर था बिल्कुल
1: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था। अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी परदेसी
0: रोमांटिक हीरो
1: उसमें
0: करेंगे
1: जाएंगे,
0: जी।
1: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है,
0: जी
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे हैं। वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में, और वो जो वो वो
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा या
0: हाँ
1: सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया।
0: इस तरह के रोल में
1: जी
0: बिलोंग
1: जी
0: करते
1: जी जी
0: हैं।
1: मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं,
1: वो मेरे
0: अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था, मैं उस समय पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया, क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था, और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर,
0: बिल्कुल
1: हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे,
0: हाँ
1: आप समझ रहे हो। वो
0: बिल्कुल
1: किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा
0: हाँ
1: बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया 1984 की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता,
0: हाँ
1: ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
0: जी।
1: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर

0: ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे। तो मुझे बुलावा आया तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था। वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने
1: जी
0: लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई, क्यों मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं
1: बिल्कुल
0: जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था। पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट
1: बिल्कुल
0: मैं सेटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो जगह है, बहुत
0: ओटीटी
1: किरदारों
0: में
1: की
0: तो
1: जगह
0: हाँ
1: है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
0: बिल्कुल
1: वो
0: नहीं,
1: यहां पर
0: ओटीटी में एक
1: अभी।
0: अच्छी बात ये हुई कि
1: जी
0: ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं,
1: जी
0: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं। वो
1: बिल्कुल
0: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में,
1: जी
0: मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चला जाता है।
1: जी
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने
1: बिल्कुल
0: सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
1: जी
0: गया था। अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में
1: जी
0: जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
1: जी
0: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल। यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
0: जी, मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं।
1: हाँ
0: बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
1: मंजिल
0: गाना
1: फिल्म
0: है।
1: से
0: हाँ, वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
1: बिल्कुल
0: खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ
1: जी।
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा
1: जी,
0: क्योंकि वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है
1: जी,
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी,
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए पसंद किए गए हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए मैं दिल्ली में ना जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था
0: जी।
1: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए दूरदर्शन उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग, हाँ तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था। वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था तो
0: जी।
1: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ, फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए पता नहीं साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा,
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी।
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था
0: जी।
1: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसा करो वैसा करो वैसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था, तो वो लाने की बात थी। तो उन्होंने मुझे चुना तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा मैं, वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल। तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री,
1: जी,
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे हैं बहुत।
0: अच्छा,
1: ठीक है, तो वो भी अभी करने का मौका मिल गया है
0: जी।
1: वो वर्टिकल्स जो है वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं, वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताया जाता है।
0: हाँ हाँ
1: ठीक है, तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बारीकियां आपके अनुभव जो आपने साझा किए बहुत अच्छे लगे और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं। और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने का।
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आकाशवाणी विविध भारती केंद्रम नीलम।
4: ఆకాశవాణి వరంగల్ కేంద్రం.